प्रात पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दे मोहे बचावहो। सुखी बसै मोर परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दया करिया, सब बैरन कौ आज संगरिया। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारी अहे, चुन चुन सत्र हमारे मारी अहे। आप हाथ दया मुझे उभरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजु सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तुजु करिय हो रच्छा। राख ले हो मुहि राखन हारे, साहिब संत सहाये प्यारे। दीन बांद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तारा, काल पाए शिव जु अवतारा। काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमासा। जमन काल जोगी सब कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आद्यंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिसहि को हमारी, सकल प्रजा जन आप सुवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पाल मो बाध्य कियो। कट करके अंतर की जानता, पले बुरे की पीर पिछानता। चीटी ते कुंचरिया स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

पढ़ पढ़ की जानै। जब उदकारख करा करतारा प्रजा तहरत तब देह पारा। जब या करख करत हो कम हूं तम मैं मिलत देह धर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अर आलम। निरंकार निर्भकार निर्लंब आद अनिल अनाद।

बेसन भगत की ए फल होई आल ब्याज शुभ सकै न कोई सम्मत सत्रह सहज पचावन हाल वधि प्रथम सुख दावन तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परि लहो ले हो सुधारा दोहरा नेत्र तोंके चरण तार सद्रव तीर्थ रंग श्री भगवत पूरन की ओ रागबर कथा प्रसंग दोहरा साध असाध जानो नहीं बाद सुबाद बेबाद ग्रंथ सकल पूरन कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाहे गहे जपते तुमरे तपते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह माते एक ना माने ओ सिमरित शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक ना जाने ओ श्री सपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तो हे बखाने ओ दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गह तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज आस गोविंद दास तुहार

अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझै हर कै नाम महासंतोख होवै गुर बचनी प्रभ स्यों लागै पूर्ण ध्यान तृष्णा बुझै हर कै नाम महासंतोख होवै गुर बचनी प्रभ स्यों लागै पूर्ण ध्यान रहाउ महाकलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल

रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जिया सबके जान ला सब कि तेरे वस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद का।

0: महाराज जी फिर सोचाचार करदे ने, इशनान करदे हन पिछले पहर दा जी।
1: बैठत है पुन सभा मजार,
0: फिर संगत जी सभा दे विच आके, संगत विच आके महाराज जी फिर बैठ जांदे ने इशनान करन तो बिना। संगत जी दो समय महाराज जी इशनान दी क्रिया करदे हन, ते इस प्रकार जिन्हां ने गुरु दरबार दे विच आउणा हुंदा ना, उन्हां नूं भी दो समय ही इशनान करना चाहीदा है। अमृत वेले तां असीं करदे हां भाई, जिन्हां ने गुरु दरबार दीआं सेवावां निभाउणीआं ने, ग्रंथी कीर्तनीए ढाडी सिंह रागी सिंह गुरु घर दे वजीर, उह सारे दिन दी असीं कोई क्रिया कीती हुंदी है, कोई क्रिया करन तों बाद फिर बंदा इशनान करके जिहड़ा गुरु दरबार दी गुरु मर्यादा दी नहीं निभाउंदा पिआ, इह टकसालां दे विच अजिहा ही हुंदा सीगा। भाई जदों भी कोई सिंह किरिया करन वास्ते जांदा, उस तों बाद उहनूं इशनान करना पैंदा, गुरु दी ताबिया दे विच आउण लग्गिआ। इस प्रकार भाई इह किरिया जिहड़ी है इह रोजदार रोज दी सतगुरु पातशाह जी दसदे हन, ते गुरु दा डर भै बणिआ रहिंदा है मन दे विच। इस प्रकार भाई दो समय दस्तार सजाउणी, दो समय केसां नूं वाहुणा चंगी तरां, इस प्रकार खालसा जी दो समय इशनान करना, ते ए महाराज जी दी रोज दी जिहड़ी है ए महाराज जी दी क्रिया भाई संतोख सिंह जी लिख रहे हैं, जो साडे उत्ते भी लागू हुंदी है। सानू भी चाहीदा भाई ए जिहड़ी महाराज सच्चे पातशाह जी रोजदार रोज जिहड़ा गुरु दा सिख हुंदा उह किहो जिहा होना चाहीदा। असीं गुरबाणी दे वाक पढ़दे हां ना, गुर सतगुर का जो सिख अखाव सो भलके उठ हर नाम त्यावै, उदम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरनावै, उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलबख दुख पाप लै जावै, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बहंदिया उठद्या हर नाम त्यावै। इस प्रकार सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी दुपहर दे समय थोड़ा जा आराम करदे हन, ते खालसा जी फिर सोचाचार पवित्रता दे नाल इशनान पानी करदे हन।
1: कथा समागम को तिस का,
0: फिर संध्या दे समय खालसा जी इशनान करके महाराज जी संगत विच आके टिक जांदे ने, फिर कथा विचार शुरू हो जांदी है, कथा आरंभ हो जांदी है। पहला कीर्तन करदे हन, पहले पैर दे विच रबाबी दिन दे रबाबी सिंह, ते दिन दा जिहड़ा पिछला पैर हो जांदा है, फिर सतगुरु पातशाह महाराज जी कथा करवाउंदे हन, ते कथा दे समागम हुंदे हन जी।
1: गुर जुत संगत सुनहै रसाल,
0: ते महाराज जी दे समेत सारियां संगतां बड़े प्यार दे नाल कथा सुनदियां हन।
1: भगत विराग ज्ञान गुण सानी,
0: खालसा जिहड़ी कथा है ओ भगती विराग वाली, ते इसे करके सतगुरु जी दे नाल सानी गुणा दी सानी गुणा दे नाल मिली जुली हुंदी है।
1: होहे कथा आत्म सुखदानी,
0: कहिंदे खालसा जी आत्मा नूं सुख देण वाली जिहड़ी कथा है ना एही हुंदी है, इह नहीं भी किसी दी कोई निंदिया किसी दी चुगली। इस करके तुसी वड्डे महापुरखां दी कथा सुन लवो, श्रीमान संत ज्ञानी गुरभजन सिंह जी खालसा जी दी सारी कथा गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रिकॉर्ड उन्हां दी उन्हां समयां दे विच। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਦੇ ਵੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ।
1: ਚਾਰ ਘੜੀ ਬਾਸੁਰ ਜਬ ਰਹਿ,
0: ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚਾਰ ਘੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 24 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਰ ਕ ਘੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ,
1: ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕੋ ਸੁਖ ਲਹੈ,
0: ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਬਾਬੀ ਜਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ

0: भर के डोरे सिंह दे ते जोश की आदलिया
1: भर के डोरे सिंह दे ते जोश की आदलिया
0: घोड़े नू चमका

0: दर्गह सुख पावह संतह ऐसी कथो कहानी स्वर पवित्र नर देव पवित्रा खिन बोलह गुरमुख बाणी रहाउ परपंच छोड़ सहज घर बैसह झूठा कहो न कोई।
1: पिछली पंक्ति दे विच दो स्वरूप आए हन पवित्र पाठ दे, सोर पवित्र नर देव पवित्रा। पहला तत्ते दे जड़ा करने तो रहत है, दूसरा तत्ते दे करने दे नाल चरणा दे विच रारे आए हन उचारण ज्ञानी जी दी।

0: पिस्ता
1: कोई बच
0: कोई बाछे पिस्ता कोई सुर गिंदु कहु नानक जिन हुक्म पछाता प्रभ साहिब का।

उचारण किया है, थोड़ा जिहा विशेष ध्यान दे के उचारण करना सरंजाम, जिवें रहिरा साहिब च वी आपां पाठ करदे आ, सरंजाम नहीं उचारना, टिप्पी दी आवाज नन्ना नहीं उचारनी, सरंजाम अशुद्ध उचारण है, सरंग रारे दी टिप्पी दी आवाज शुद्ध, अनेक जतन ओ आ कै सरंजाम,

0: पाठ पोला करना कल नहीं कहना, जिवें ज्ञानी जी ने उच्चारण किया है हर का नाम अमृत कल माहे।
1: नानक गुर गोविंद जिस तूठा घट घट रमैया तिन ही डीठा राम कली महला पंजवा

0: कतहु ना तावै गुर प्रसाद को एहो महल पावै।
1: डिगै पाठ जिदा उचारण कीता गया एवें शुद्ध है। लिखती रूप भी डड्डे नू सिहारी गग्गे नू दुलावा, पर सरूपां दे विच जां पोथियां दे विच डड्डे नू सिहारी ते गग्गे नू सिहारी डेग ना डोलै इदा छापिया गया है। पर जो संप्रदायी जां पुरातन सरूपां दे दर्शन करन तों जिहड़े पाठ दा दर्शन मिलदा है, डड्डे नू सिहारी गग्गे नू दुलावा डिगै ना डोलै कतहु ना तावै।

0: संत हमारा राख्या पड़दा संत प्रसाद मोहे कबहू ना कड़दा
1: पड़दा ते कड़दा दोवें पाठ साध संगत जी इसे तरह पोले उचारण करने पड़दा कड़दा नहीं उचारण करने पड़दा ते कड़दा ते मोहे पाठ संत प्रसाद मोहे कबहू ना कड़दा मोहे ममे नू होड़ा हाहे नू सिहारी दी सहत शुद्ध पाठ है जे किसे कोल होर छपया है ते पोथियां ते नहीं लिखना कापियां ते अपनियां ते ममे नू होड़ा हाहे नू सिहारी दी सहत पाठ आप जी लिखो।

0: टूट पटल सोधे शास्त्र सिमरत सगल
1: पटल पाठ पोला करना पटल नहीं करना जा पटल भी नहीं करना किसी भी अखर नू अगेतर पिछेतर नहीं लाना सीधा पटल सारे अखर कठे करने उत्ते कोई भी मात्रा नहीं लानी पटल सीधा उच्चारण करना जिवें ज्ञानी जी ने कीता है बेन हर नाम न टूटस पटल सोधे शास्त्र सिमरत सगल
0: सो नाम।

ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਗਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਇੱਕ ਕਦ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਸੈਕੜਿਆਂ ਚ ਇੱਕ ਕਦ ਨੇ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋਟਨ ਮੇ ਕਿਨਹੁ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਪਛਾਨ, ਕੋਟਨ ਮੇ ਨਾਨਕ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦ ਨਾਰਾਇਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਬੋਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਚ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮੇ ਚ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਪਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਵੇਗਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਲ ਗਏ, ਭੁੱਲਿਆ ਕਿਉਂ, ਸਮਝਦੇ ਚ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਂਝ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਮਝਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਨਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਓਤਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਸੀ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਗਿਆਨੀ ਸੀ,
जन्म तो सूझवान से, जन्म तो दूरदृष्ट से। भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज कहनन ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। ए गुरु अर्जन देव जी, तुसी ते जमदिया ही ब्रह्म गए ने। हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, थोड़े शरीर दा जन्म होया, शरीर दे नाल नाल धर्म दा जन्म होया, ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। कहिंदे ने धन गुरु अर्जन देव जी महाराज 2.5 साल दे सन, ते गुरु अमरदास जी महाराज दा सिंघासन गोविंदवाल साहब दी गल है, चढ़न दी कोशिश पे करदे सन, उपर तखत ते चढ़न दी कोशिश पे करदे सन। भजे हुए माता भानी जी आए, उन्होंने चुक लिया, आखिया लाल जी ए गुरु नानक दा तखत है, ये तीजे गुरु नानक दा सिंघासन है, इस ते बैठन दी कोशिश ना करा, इस ते आइंदा ना चढ़ना। प्यार नाल डांट दे आया बच्चे नु कह रहे हैं, बालक गुरु अर्जन देव जी इस तखत ते नहीं बैठना, चढ़न दी कोशिश ना करनी, ये गुरु नानक दा सिंघासन है। गुरु अमरदास जी महाराज सुते से दा गए, भानी दे हथों 2.5 साल दे इस बच्चे नु लेके बालक गुरु अर्जन देव जी नु सिंघासन ते बिठा दिता। आखिया बहुता बाणी का बहुता, इते बाणी दा जहाज है, जे ए नहीं सिंघासन ते बैठेगा ते होर कौन बैठेगा, इते धुर दरगाहों बैठे आया है, इनू ते रब ने बिठाया, इनू ते परमात्मा ने बिठाया, इते प्रभु दी गोद विच है, और इस दे आसरे ते पता नहीं कितनियां नू परमात्मा दी गोद हासिल होवेगी। इते बहुत है, इते जहाज है, इते आसरे पता नहीं कितने पार होणगे, ए नहीं बैठेगा ते कौन बैठेगा। जन्म तो बुजुर्ग कोई करोड़ा च एक अद, कदी कदी जन्म सारियां दे बच्चे दी तरह होंदा, शरीरक तौर ते भी बच्चे, दिमागी तौर ते भी बच्चे, ना समझी कुछ भी पता नहीं। कदी कदाई संसार दे इतिहास दे कोई बुढ़िया दी तरह पैदा होंदा है। चीन दे चे कथा है, भई लाद से बुढ़िया दी तरह पैदा होया, भाव जन्म तो गया नहीं। कबीर बारे कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, विष्णु नु कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, ब्रह्मे नु कहिंदे ने कमल तो पैदा होया, नहीं जन्म तो कमल जैसे सन, डुबे नहीं गर्क नहीं होए, समझ सी। जैसे पानी दे कमल डुबदा नहीं, जिहड़े मनुख संसार दे डुबन ना, पदार्थां दे डुबन ना, वो कमल दी तरह होंदे ते डुबे हुए ने, सहजे सहजे फिर तैरना ते निर्लेप होना सिख देने, पर कोई जन्म तो भी निर्लेप होंदे, उन्हां नू कहिंदे ने इन्हां दा जन्म ते कमल तो है, भाव कमल जैसे ने, कमल डुबदा नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने हम दे खां तै डुबे आले, पहले पातशाह जी दा वा महाराज कहिंदे मैं ते देखदा डुबे पै, डुबे पै, सुते सिद्ध गल आ गई तो मैं अर्ज करा, पानी विच कुत्ते तैर दे ने, गौवां भी तैर दिया ने, मज्जां भी तैर दिया ने, पानी विच चीते भी तैर के लंघ जांदे ने। मैं केरला दे देख के दंग होया सी, बहुत पुरानी गल, 60 फुट डूंगा पानी हाथी नहावे पिया, के नहा के बाहर निकला हाथी तैर रहे, पहाड़ वर्गा शरीर तैर रहे, हाथी तैर रहे ने, गौवां तैर दिया ने, घोड़े तैर रहे ने, मज्जां तैर दिया ने, कुत्ते तैर रहे ने, शेर तैर रहे ने, चीते तैर रहे ने, मनुख डुबदे ने, बंदा डुबदा, सिर्फ मनुख डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है? मज्जां ते तैर दिया ने, घोड़े ते तैर दे ने, हाथी ते तैर दे ने, गौवां ते तैर दिया ने, कुत्ते भी तैर दे ने, बंदा डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है? नहीं, मनुख भी जिंदा ही डुबदा है, मुर्दे ते तैर दे ने, तैर दे ने।
मुर्दा ते तैर कर। यूपी दे अंदर मध्य भारत दे चे सनातन मध्य कोई हिंदू सन अगर चलाना कर जाता है देही छड़ जाता है उन्हें जल प्रवाह कर दें दास संस्कार नहीं करते जल प्रवाह कर दें। पर जब जल प्रवाह कर दें तो मन मन दो दो मन दे नाल पत्थर बनते हैं क्यों लाश तैरन लग पैंदी हालांकि लाश जिंदा मनुख नालों भारी हो जाती है वजन बढ़ जाता है लेकिन तैरती है। हैरानगी है जिंदा डुबदे ने मुर्दे तैरदे पानी दा मनुख नाल भी वैर नहीं अगर मनुख नाल वैर है तो फिर मुर्दे भी डुबने चाहिए मुर्दा तो नहीं डुबदा जीव दा मनुख क्यों डुबदा है ये अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है तवाजन खो बैठता है संतुलन गवा बैठता है ता डुबदा है। लोग इसका तवाजन डामाडोल कर देता है सीमा तो वधिया होया अहंकार इसका बैलेंस बिगाड़ देता है सीमा तो वधी हुई वासना इदा संतुलन डावाडोल कर दिया डुब जाता हम दे खाते डुबे आया इत डुब गए डुबे की पहचान की होगी उदा नितनेम डुब गया होगा नहीं करता होगा तो रहत वैद डुब गई होगी अमृत वेला डुब गया होगा गुरु भक्ति डुब गई होगी शील संयम डुब गया होगा दया विशालता समदृष्टि डुबी हुई होगी हम देखते डुबे महाराज कहते मैं ते देखदा डुबे हुए दुनिया डुबी हुई है गर्क हुई है डुबे की पहचान की है उदे कोल नितनेम नहीं होगा अमृत वेला नहीं होगा जप तप नहीं होगा शील संजम नहीं होगा दैवी गुण नहीं होंगे डुबे होगा गर्क होया होगा। कदी कदाई कोई कद मनुख अपना तवाजन अपना बैलेंस ठीक रखता है डुबदा नहीं उसे असी कहने निर्लेप है कमल की तरह पानी वधदा है कमल होर उपर उठता है धन घर दे च वध रहा है डुबदा नहीं पिया प्रभता वध रही है डुबदा नहीं पिया नहीं तो कोई प्रभता च डुबे हुए ने कोई धन संपदा दे डुबे हुए ने कोई रूप रंग दे डुबे हुए हम दे खांते हैं डुबे महाराज कहते हैं मैं देखदा दुनिया ते डुबी पई है धार्मिक जीवन ते कुछ गुणा देखड़ा है सूरज अपना नूर वंडदा है संसार दे किरणा दे रहा है परमात्मा दा प्रकाश हिरदे च पहुंचदा है गुणा दे रहा है गुणा तो पता चलता है इत्थे जानना है सारी रोशनी सूरज दी है सारे गुण परमात्मा देने सब गुण तेरे मैं ना ही को विण गुण कीते भगत न हो मेरे घर दे चानना है पर चानना ते सूरज दैना मेरा ते अगर हिरदे दे गुण आ जान गुण परमात्मा देने ठीक है गुण रोशनी ने औगुण अंधेरा है जितने अवगुण होणगे उतने ही वो भटकदा होया मनुख होवेगा अंधेरा होगा जितना गुण होणगे उतने ही उदी जिंदगी दे चानना होवेगा प्रकाश होवेगा और जीवन सही मार्ग पे चल रहा होगा। तो मैं फिर दोहरावां धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चलते पिया तो चलदी की है सुरत चलदी है तुसी चल के आ गए शरीर चल के आ गए पैर चल के आ गए ने इहदे नाल हाजरी असी भरी है असी गुरु की हजूरी च नहीं गए गुरु की हजूरी च सुरत जांदी है शब्द नाल सुरत जुड़ेगी हाथ पैर नहीं जुड़ते इस वास्ते हाजरी भरना होर गल है गुरु की हजूरी विच चले जाना होर गल है। अगर 10,000 बंदे हाजरी पे भर देन गुरु गुरु की हाजरी पे भर देने एक दो बंदे आने जिन्हों गुरु की हजूरी नसीब होगी
ਕਲਗੀ ਦਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀ ਸੁਣੀ, ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ। ਜਿਤਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਜ਼ਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੋੜਨਾ। ਸਰੋਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਸੁਰਤ, ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਚ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਂ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਰੋਤਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸੁਰਤ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ। ਸੁਰਤ ਸੁਣਨਾ, ਸੁਰਤ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਰਤ ਜੁੜਨਾ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਚ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ। ਇਧਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਧਰ ਮਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਧਰ ਮਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਧਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਇਧਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਮਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁੜ ਗਿਆ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ, ਇਹ ਜੋਤ ਦੇ ਜੋਤ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਉਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰ ਤੇਕਾ ਨਿਮਕ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੂਟ ਹੈ। ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੈ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਇੱਕ ਨਿਮਕ, ਇਹਨੂੰ ਅਤਕਥਨੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੁੱਪ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ 50 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੱਤੀ ਜਲਾਈ ਦੇ ਗਿਆ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਤੇ ਅੰਧੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗੇਗਾ। ਟੁੱਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ, ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਟਿਕ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਮ ਹੀ ਅੱਜ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਮ ਗੂੰਜਣੀਆਂ ਮਨੋ ਮਚਿੰਦਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੀਵਾਂ, ਪਿਆਸ ਕੱਲ ਮਿਟੇਗੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮਿਟਦੀ? ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਹੁਣ ਛਕਾਂ, ਹੁਣੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਟਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੁਣ ਜਪਾਂ, ਫਲ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਐਕਰ ਪਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਤਤ ਛਿੰਨ ਟੁੱਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦਮ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਟਿਕ ਜਾਓ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਟੇਗੀ। ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਕੱਲ ਮਿਟੇਗੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਾਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਰਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬੁਖਾਰ ਮੇਰਾ ਉਤਾਰੀ, ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨਾ ਤੜਪਦਾ ਰਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਤਾਪ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ।
मनोचिंतक ऐसा कहने लंबी बीमारी दे जीण वाले मरीज बीमारी नाल सहमत होके जीवन देन और निराश हो जाते ने भी ठीक नहीं होवांगे। कोई दसे भी सही उन्होंने ऐ दवाई ले लो ऐ दवाई ले लो, उन्हां दे अंदर निराशा है, रोग दे जीण दी आदत बन गई, विकारां दे जीण दा सुभाव बन गया, हुण ठीक होण दा ख्याल भी नहीं और ठीक हो सकांगे ऐसा भरोसा भी नहीं पैदा, नहीं ठीक हो सकांगे इहदे जीवना पैगा। जैसे जर्मनी दे प्रसिद्ध डॉक्टर हो गुजरे फ्रायड ने कहा है हंकार देच काम देच क्रोध देच लोभ देच जीना पैगा, इहदा कोई इलाज नहीं, थोड़ा जिहा इन्हां नूं मदन कीता जा सकदा है, बाकी इन्हां दा त्याग नहीं हो सकदा, जीवन नूं छड्ड नहीं सकदे, इन्हां दे जीवना ही पैगा। यूरोप दे पढ़े लिखे बंदियां नूं इस फ्रायड ने बड़ा निराश किया, जीवना ही पैगा, इहदे जीवना पैगा। उन्हें ऐलानिया किया भारत दे संत गलत कहिंदे ने मन विच राम है, कहिंदा नहीं मन विच काम है, मन विच निरंकार है, कहिंदा कता ही नहीं मन विच हंकार है, पंज कहिंदा कहिंदा मैं मन नूं फोल के देखिया सिवाय हंकार तो होर कुछ भी नहीं है, मैं मन नूं फोल के देखिया सिवाय वासना तो होर कुछ भी नहीं है, मैं मन नूं फोल के देखिया कहिंदा सिवाय काम तो होर कुछ नहीं, एवें कही जांदे राम है मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछा, एक सीमा तक वो ठीक कहिंदा है, एक सीमा तक। जैसे सागर दे उपर उपर ते लहरां ने या कुछ लभण गया मछलियां ने संख ने सिपियां ने मोती ते गहरे तल दे किसे किसे दे हत्थां दे उपर उपर ते वाकई मन दे ख्वाहिशां ने कामनावां ने वासनावां ने जो बहुत गहरे डुबकी ला लैंदे ने उन्हां नूं राम नाम दा हीरा मिल जांदा है। तन में मनवा मन में साचा सो साचा मिल साचे राचा, तन विच मन है मन विच सच, तन विच मन है मन विच प्रभु है, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछा। खेड सारी पहचान आती है, पहचान आती है, जिसनों मैं नहीं जानता वो नहीं है, जिसनों मैं नहीं समझता वो नहीं है, जो मेरे चेते च नहीं वो नहीं है, जो मेरी सिमृति च नहीं वो नहीं है, जो मेरी समझ दे च नहीं वो नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे हे प्रभु चलते पिया तेरे मार्ग ते पर उस बच्चे दी तरह जिसने अज चलना सीखे, दो साल बाद ढाई साल बाद डेढ़ साल बाद बच्चे चल देने पैर पुट देने खड़े होने, कि चार पांच साल दा बच्चा होवे ते बच्चा चले ना मां बाप नूं चिंता हो जाती है, गल की है बच्चा खड़ा नहीं होता पैर नहीं पुटता, चार साल दा हो गया पांच साल दा हो गया डॉक्टरों को ले जाने वैद्य को ले जाने, तीन साल दा हो गया चार साल दा हो गया मुंह अक्खर नहीं निकल बोलता नहीं, मां बाप नूं चिंता हो जाती है। जिस दिन बच्चे की जबान चो पहला बोल निकलता है अक्सर मां ही निकलता है, घर दे खुशियां मनाईया जाए, घर दे प्रसाद वंडदे ने मिठाइया वंडदे ने नचदे ने टपदे ने बच्चा बोलन लग पे, जिस दिन बच्चा कदम पुटे बच्चे ने कदम पुटे चलन लग पे, चलो एक कदम ही सही कदम ते पुटे खड़ा ते होया, कोई ती चाली साल तो गुरुद्वारे आ रहे होवे ते अजे भी सुरत नहीं चली शब्द दी तरफ, यकीन जानो गुरु नूं भी चिंता हो जाती है गल की है, इन्ने चिर हो गया गुरुद्वारे आउंदे, पचास साल हो गया गुरुद्वारे आउंदे आ अजे भी अमृत वेले उठ के रसना वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं जपदे, गुरु नूं भी चिंता हो जाती है बोलना ही नहीं आया, बाबा बोलना क्या कहिए जैसे राम नाम रव रहे, इन्हू बोलना ही नहीं आया, ये बोलता ही नहीं, पचास साल का हो गया बोलता नहीं पे, ये तीह पैंती साल हो गए ने इन्हू ये चलता ही नहीं, चलना ते सुरत ने
जपना ते रसना ने रसना नाम जपो तब मथिए इन बिद अमृत पाओ जपना रसना नाल होना और जपण दे जो ढंग इस्तेमाल करना है गुरु नानक ने दस दिता है गावीए सुनिए मन रखिए जबान गायन करे ते मन सुने मन सरोता बने जबान वक्ता बने अगर जबान वक्ता बन के मन सरोता बन गया ये पुरुष पहुंच गया जबान वक्ता ते बनी है मन सरोता नहीं बने ये चलते पे पहुंचे कोई जबान वक्ता ही नहीं बने जपदा ही नहीं ते उस बच्चे की तरह होया चार पांच साल का हो गया मुंह बोल नहीं निकलते पे मां बाप नो चिंता गल की है बोलता नहीं डिगना की है ते चलना की है सत्संग विच आया चल पिया कुछ संगत विच बैठा है डिग गया सच बोले है चल पिया झूठ बोल रहे है डिग पे दान कीता है चल पे है बेईमानी कर रहे है डिग पे अमृत दी प्यास पैदा हुई है चल पे है।

0: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन के जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तो दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा बैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: ऐसा को थिया
1: अपना खेला करना हार
0: दूसर कौन कहे विचार
1: जिसनो कृपा करे तिस आपन नाम दे
0: वडपा की नानक जन से श्लोक
1: तज हो सियान पुसुर जन हो सिमरो हर हर राई
0: एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी
1: मनुख की टेट वृत्ति सब जान
0: देवन को एक है भगवान
1: जिसका दिया रह अगाए
0: और न तृष्णा लाके आए
1: मारे रखे एको आप
0: मानक टैक्षणा ही हाथ
1: इसका हुक्म भू सुख होए
0: इसका नाम रख कंठ परोए
1: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए
0: नानक विघ्न लागे कोए
1: उसत मन में कर निरंकार
0: कर मन मेरे सत व्यवहार
1: निर्मल रसना अमृत पियो
0: सदा सहेला कर ले जियो
1: नैनो पेख ठाकुर का रंग
0: सदा संग बिन सह सब संग
1: चलो मार्ग गोविंद
0: पाप जपिए हर बिंद
1: हर हर कर्म श्रवण हर कथा
0: आदर ज्ञान नानक उज्जल मथा
1: बड़ भागी ते जन जग माहे
0: सदा सदा हर के गुण गाहे
1: राम नाम जो करे विचार
0: चेतन मंतगनी संसार
1: मन तन मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जानो ते सुखी
1: एको एक एक पछानै
0: ते तुत कियो सोजी जानै
1: नाम संग जिस का मन मानिया
0: नानक तने निरंजन जानिया
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजै
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझै
1: सात संग हर हर जस कहत
0: सर्व रोग त्यो हर जन रहत
1: धन दिन कीर्तन केवल बखयान
0: सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा
0: उसकी कटिए जन की फसा
1: पार ब्रह्म की जिस मन भूख
0: नानक प्रसन्न लागे दुख
1: जिसको हर ब्रह्म मन चिते आवे
0: सो संत सोहेला नहीं दुलावे
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे
0: सो सेव को किसते डरे
1: जैसा सत ऐसा दृष्ट आया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: शोधत शोधत शोधत सीजया
0: प्रसाद तत् सब बुझया
1: जब देखो तब सब शमूल
0: नानक सो सूक्ष्म सोई स्थूल
1: मैं किस जन मैंने किस मरे
0: अपने चलते आप ही करे
1: आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट
0: आज्ञाकारी तारी सब सृष्ट
1: आपे आप सगल में आप
0: अनक जुगत रच था व्यथा
1: अविनाशी ना ही किस खंड
0: धारण धार रहे हो ब्रह्मांड
1: लख पे पुरख प्रताप
0: आप जपाए था नानक जाप
1: जिन प्रभ जाता सो सो बावंत
0: सगल संसार उदर तन मंत्र
1: प्रभ के सेव सगल उदाहरण
0: प्रभ के सेवक दुख विसारण
1: आपे मेल लय कृपाल
0: गुर का शब्द जप भय निहाल
1: गुर की सेवा सो ही लागे
0: जिसनो कृपा करे बट भागे
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: नानक तन पुरख को उत्तम कर मान
1: जो किस करे सो प्रभ के रंग
0: सदा सदा बसै हर संग
1: सुपाई हो वैसो होए
0: करने हार पछाने सोए
1: रब का किया जन मीठ लगाना
0: जैसा सत ऐसा दृष्टाना
1: जिसकी उपजे तिस माहे समाए
0: सुख निदान उन्हों।

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: पार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमरहु गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस्त नित त्याग हो तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहु
0: साथ संग अग्न सागर तरहु
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का यह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल यह रतन
1: संत कमाप्त हो उदहार
0: आप त्रै लोकै निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजै
0: सुन सुन अनंत करे प्रभु गाजै
1: रखे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिनकै साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मिलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेवा
1: काल जंजाल विकात के रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक नवहि खेप हमारी
1: प्रभु की उस्तत करहो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सो होत निधान
1: सब इच्छा ता की पूर्ण होए
0: वरदान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए स्थान
0: और न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रिद नव निद
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सगल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टिता
1: ये पल तिस जन कै मुख भने
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: एहो निधान जपै मन कोए
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखाणी
1: सगल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत कै मन विश्राम
1: कोट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाते मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरणता का दुख निवार है
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार है
1: निर्मल शोभा अमृतता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबसे ऊंचता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम।

पौड़ी वडी वडाया पार तेरा मर्तबा, रंग प्रंग नेक न जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किछ जान ला, सब किछ तेरे वास तेरा कर भला, तेरे कर नंद वधाई तुद कर, माण भता तेज अपना आप जर।

0: KRPI ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਵ ਫਰੋਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਸਰੀ
1: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ KRPI 1550 ਰੇਡੀਓ ਫਰਨਡੇਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ
2: ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਤਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਥੂਲ ਇੱਕ ਸੂਕਸ਼ਮ ਉਹ ਜੋ ਸੂਕਸ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅਸਥੂਲ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਹੈ ਰੋਗ ਅਕਸਰ ਤਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਗ ਅਕਸਰ ਮਨ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੂਕਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਸੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੋਗ ਕੀ ਹੈ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਸੋਗ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੋਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਸੋਗ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਗ ਮਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਗ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨ ਸੋਗ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਿਨ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਸੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਿਤਵੋ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਚਿਤਵੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਚਿਤਵਿਆ ਹਰ ਕਰੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿਤ ਨਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੋ ਸੋਗ ਇਹ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਭਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰ ਗਈ ਅਜੋਕੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵਕਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਮਨ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੋਈ ਖੇਲ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਕੋਈ ਰੂਪ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ ਉਸਦੇ ਚ ਬੈਠੋ ਖੇਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਗ ਮਿਟ ਜਾਏ ਪਰ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੋਗ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਗ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਸੋਗ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਹੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਪਛਤਾਵੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਸਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੋਗ ਦੇ ਚ ਜਲਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋਗ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਦਾਚਾਰ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋਗ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਹੋਵਨ ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਹੋਵਨ ਤੋ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਰਕ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਨਰਕ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਹੀਏ ਕੁੰਭੀ ਨਰਕ ਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਤਨ ਦੇ ਚ ਰੋਗ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਸੋਗ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੋਗ ਤੇ ਸੋਗ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੰਗ ਹੈ चाहे कोई तमाशा है, चाहे कोई खेल है, चाहे कोई गीत है, चाहे कोई संगीत दी धुन है, मन ऐसा है सबनों पुराना कर देंदा है। क्यों? मन चंचल है। चंचल दा मतलब ही है चल चल, जो चल रहे है, चल रहे है, चल रहे है। तो मनोरंजन ते चल नहीं रहे, अपनी थां ते रुके होया है। चाहे रंग है, चाहे रूप है, तमाशा है, खेल है, इते अपनी थां ते खड़ा है। मन चंचल लंगे अग्गे, तो मन दे तल ते सब कुछ बेमैनी हो जांदा है, और उस बेचैनी परेशानी दी हालत नूं सोग कहिंदे ने। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है मुरझाया होया बैठा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है औके भर रहा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है एक अपने आले दुआले बड़ा दुखत वातावरण पैदा कर रहा है, सोग भरिया। एक सोगी कोल बैठ के एक सियाने तो सियाणा मनुख भी प्रसन्न चित नहीं बैठ सकेगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा दार्शनिक भी मन दे तल ते लड़खड़ा जाएगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा आनंदित भी महसूस करेगा, मेरा आनंद उड़ गया, खो गया। या इंज भी कह लो, सोगी मनुख कोल कोई बैठना पसंद भी नहीं करता। सोग ग्रसे मनुख कोल हर मनुख दूर भजना चाहता है, पर इस भुलेखे च भी नहीं पैना चाहिदा। मुस्कुरांदे होए चेहरियां दे थल्ले भी सोग हुंदे ने, हसदी होई जिंदगी दे थल्ले भी बड़ा भयंकर सोग हुंदा है। और सोग है अनंत चिंतावां दा मजमुआ। राजयोग भर्तरी इसका एक बड़ा सुंदर खुलासा पेश कर देने कि मनुख सोग देच किस तरह ग्रस्त हो जांदा है, किस तरह फस जांदा है, और ए आले दुआले किस तरह दूषण वातावरण पैदा कर देंदा है। सोगी बंदे दा पत्नी नाल संबंध नहीं जुड़दा, सोगी मनुख दा मां बाप नाल रिश्ता नहीं बनदा, सोगी मनुख भरावां तो दूर रहिंदा है, पुत्रां तो दूर रहिंदा है, सोगी मनुख तनहाई बैठना चाहुंदा है। सोग इतना अंधकार पैदा कर देंदा है, और सोग मन नु इतना सुकोड़ के रख देंदा है कि हुण संकुचित रहना चाहुंदा है, किधरे एकांत तनहाई विच बैठना चाहुंदा है। सोग इस नु महफलां विच नहीं बैठन देंदा, सोग परिवार नाल संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग किसी पदार्थ नाल भी संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग संकोच के रख देंदा है, सोग सिकोड़ के रख देंदा है, सोग निचोड़ के रख देंदा है। और ये तनहा बैठ के अपने सोग दे च ही जीना चाहता है, और ये सोग पता नहीं कितने तरह के रोगों नु जन्म देंदा है, कितने तरह की मानसिक बीमारियां नु जन्म देंदा है। इत्थे तक कौन पहुंचांदा है? इच्छावां पहुंचांदियां ने, ख्वाहिशां पहुंचांदियां ने। क्यों पहुंचांदियां ने? पूरियां नहीं आउंदियां। इस नूं इंज एक सरिता एक नदी दा रूपक अलंकार बना के राजयोग भर्तरी इस सोग दी रूपरेखा पेश कर देने। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा त्रंग खरी व्याकुली गंभीर है। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, व्याकुल बेचैन, चैन नहीं है, सुकून नहीं है मन दे तलते। क्यों? ख्वाहिश है, आसावां इस दे अंदर चल रही ने, किसे किसे इच्छा नाल संकल्प चल पेंदे ने, नहीं ते इच्छावां चलदियां रहिंदियां उहनां नाल संकल्प नहीं चलदे। इच्छा ओही पूरी करन लई मनुख दृढ़ हो जांदा है जिस दे नाल इस दी संकल्प शक्ति चल पवे, हां ए इच्छा मैं पूरी करनी है, बाकी इच्छा बह जांदियां ने। ए इस तरह है, दरिया ते बह रहा है बस ओही पानी साढ़े शरीर का हिस्सा बनिया जो पी लिया सी उस वक्त दे दरिया चो ओही पानी साढ़ा हिस्सा बनिया जो असी अपने खेत नूं सिंच दिता बाकी तो वग रहा है। इच्छा पूरी करन विच जद मनुख दृढ़ संकल्पित हो जाता है तो वह इच्छा तो कई दफा पूरी हो जाती है ते जे ना पूरी होवे तां वी एक रेखा छोड़ जाती है बाकी इच्छावां इन चलदियां रहिंदियां ने जिवें नदी बह रही है। भावें नदी दे कोल घर है बह रही है पर नदी नाल उतना ही मतलब है जो पी लिया पानी ओही हिस्सा बने है बाकी वग रहा है। दिन रात ख्वाहिशां दी सरता अंदर वग रही है इच्छावां दी नदी अंदर चल रही है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी इस आसा रूपी नदी देच पानी केड़ा है संकल्प जिस जिस इच्छा नूं पूरी करन वास्ते दृढ़ संकल्पित असी हो जांदे हां ओ उस नदी दा जल बन जांदा है उस नदी दी धारा बन जांदी है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी तृष्णा तरंग खरी इस आसा रूपी नदी देच अगर संकल्प पानी है तो तरंग की ने तृष्णा क्योंकि जिथे इच्छा है उथे संकल्प ते पैदा होणगे ते जिथे दृढ़ संकल्प हो गया इच्छा दी पूर्ति लई उथे तृष्णा ते प्रबल होवेगी लाजमी होवेगी। व्याकुली गंभीर है ए नदी गहरी कितनी है इदा पाठ कितना गहरा है ये चौड़ी कितनी है ये गहरी कितनी है तो ए राजयोगी ए महान संत मन दियां गहराइयां नूं समझण वाला ए महायोगी इंज कह रहे है व्याकुलता ही इसकी गहराई है बेचैनी ही इसकी गहराई है। और एक हकीकत है बेचैनी अजे भी नापतोल विच नहीं आई कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है बहुत गहरी है बहुत गहरी है इदियां जड़ां नहीं लभदियां इदी तय नहीं लभदी व्याकुलता ही इसकी गहराई है। जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है और जिथे परबल तृष्णा दे तरंग ने व्याकुलता ते उथे है ही। इस नूं उल्टा के कह दो ए बेचैन क्यों है त्रिशनालु है ए त्रिशनालु क्यों है इहदे अंदर संकल्प ने संकल्प क्यों ने इहदे अंदर इच्छावां ने इच्छा दी पूर्ति करना चाहुंदा है। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी त्रिशना तरंग खरी व्याकुली गंभीर है। आलम ते इस तरह कहंदे ने जिंदगी नापी जा सकती है चलो वध तो वध कह लिए 100 साल तृष्णा नहीं नापी जा सकती व्याकुलता नहीं नापी जा सकती। और ये जिहड़ी आसा नदी है कितनी लंबी है जमीन देते वगदियां या नदियां दे ए बकायदा धारावां नापिया जा चुकियां ने ए किन्नी मील लंबी है इहदा पाट किन्ना चौड़ा है एक गहरी कितनी है एक कोई नदी है जो मन देच वग रही है ना लंबाई नाप दे चाहती है ना चौड़ाई नाप दे चाहती है ना गहराई नाप दे चाहती है वो है आसा। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने आसा विच अत दुख घना मन मुख चित लाया बकायदा फैसला भी कर देता है बहुतियां व्यर्थ दियां इच्छावां किस दे अंदर आउंदियां ने जिसने अपने मन नूं ही सामने रखे है। और सोग किथे ज्यादा आउंदा है जिथे इच्छावां ज्यादा ने और सारियां इच्छा किस दियां पूरियां हुईयां ने रूहे जमीन ते एक दियां भी नहीं हुईयां कोई एक मनुख भी इतिहास देच असी बयान नहीं कर सकते या दावे नाल नहीं कह सकते कि इस बंदे दियां सारियां इच्छावां पूरियां होगी एक भी नहीं होया। गजब दी गल इतना लंबा चौड़ा पृथ्वी दा इतिहास और इतनी मनुखता और एक दिया भी सारिया इच्छावां ना पूरियां होईयां ते फिर भी हर बंदा दृढ़ संकल्प होवे मैं अपनियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां करनियां ने ते इस तो वड्डी होर मूर्ता केड़ी होवेगी इस तो वड्डी होर नादानी केड़ी होवेगी पहले तू ओ उदाहरण ते कोई लभ ले किस दियां सारियां ख्वाहिशां पूरियां होईयां ने किस दियां सारियां इच्छावां पूरियां होईयां ने कह दिता सी किसे वकत बहादुर शाह जफर ने इस कच्ची जमीन दे च पक्के महल किस दे बने ने इस कच्ची धरती दे च पक्की जिंदगी किसनों मिली है लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में किसकी बनी है आल में ना पाए दार में लेकिन फिर भी
1: You're listening to KRPI 1550 Radio Ferndale, Washington.
3: गुरबाणी शब्द कथा कीर्तन सुन वास्ते सुनदे रहो रेडियो 1550 AM संत मस्कीन जी भाई पिंदरपाल जी भाई ठाकुर सिंह अते कई होर ज्ञानी ते महाकवियां दियां कथावां सुनन वास्ते ट्यून इन करो 1550 AM रेडियो स्टेशन
4: सुनदे हो जी
5: हां जी
4: दसो जी की पकाइए
5: अपने गवांड वाले फुटी के न जाइए आलू दे दे बधिया बैंगन अनमोल ने गोभी उत्थे ताजी

0: तेजे सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900।
4: तुहाडा घर तुहाडी सब तो वड्डी इन्वेस्टमेंट तुहाडा सब तो वड्डा एसेट हुंदा है।
5: इसनु खरीदन जा वेचन लई तुहानु चाहिदा है एक अजेहा रियल्टर जो तुहाडे लई काम करे, जिस ते तुसी भरोसा कर सको, जो तजर्बेकार होवे। अजेहे ही एक रियल्टर हन गुरदयाल सिंह बाद, जो अपने 35 सालां तो वद्दे तजर्बे नाल रीमैक्स दे टॉप प्रोड्यूसिंग रियल्टर्स विच शामिल हन।
4: मार्केट दी पूरी समझ अते तुहाडे भरोसे ते पूरे उतरणगे गुरदयाल सिंह बाद।
5: सो हर तरह दी रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, फार्म अते इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी संबंधी सही लाले आज ही गुरदयाल सिंह बाद नू
4: 604-351-5111 ते कॉल करो। 604-351-5111 गुरदयाल सिंह बाद।

0: प्राइस दीजिए सब्जी भले खाना है फ्रूटी क्या नहीं जाना है फ्रूटी क्या नहीं जाना है फ्रूटी क्या नहीं जाना
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो
2: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन
3: थ्री लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक
1: जा कॉल किरण एट 604-581-1900
4: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਾਫਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604-349-1313 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੁਪਈਏ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਓ 604-349-1313 ਯੂਨਿਟ 103-8140-120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ 604-349-1313 604-349-1313 ਗਗਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ
5: Need help navigating our ever-changing real estate market? Grudel Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Grudel Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at grudelbaudgroup.com.

0: सिर्फ हल खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री प्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी ते नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लेंदे हन।
3: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
1: जा कॉल किरण @604581190।

0: प्रतापुरुष निर्भो निर्वैर काल मुहूर्त अजूने सैभं गुरु प्रसाद मुकुसरे शास्त्र खटो पिंज गिरन चढ़ जाए अंध लखे बधुरो सुने जो काल कृपा कराए। सम्मान योग गुरु रूप साथ संगतियों फते प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने अकाल पुरख दे दो रूप मने ने निर्गुण सरगुण। निर्गुण आप सरगुण भी ओही कलाधार जिन सगली मोही। निर्गुण रूप विच ओ सूक्ष्म है अदृश्य है, सरगुण रूप विच ओ दृश्यमान है। मकान दिखाई देंदा है, बुनियाद नहीं दिखाई देंदी। दरखत दिखाई देंदा है, जड़ा नहीं दिखाई देंदी। शरीर दिखाई देंदा है, आत्मा नहीं दिखाई देंदी। संसार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं दिखाई देंदा। इसनू इंज बयान करिए, जो मकान का गुप्त हिस्सा है वो बुनियाद है, तो जो बुनियाद का प्रगट हिस्सा है वो मकान है। जो दरख्त का गुप्त हिस्सा है वो उस दियां जड़ां ने, और जो जड़ां का प्रगट हिस्सा है वो दरख्त है। जो शरीर का गुप्त हिस्सा है वो आत्मा है, और जो आत्मा का प्रगट हिस्सा है वो शरीर है। जो संसार का गुप्त हिस्सा है वो निरंकार है, ते जो निरंकार का प्रगट हिस्सा है वो संसार है। ये जो प्रगट है ये उस अदृश्य का, उस अरूप का, उस गुप्त का खेल है, तमाशा है। जैसे सागर विच लहरां बन रही ने, मिट रही ने, बन रही ने, मिट रही ने, पर इन्हां लहरां का पैदा होना, इन्हां लहरां का मिटना सब कुछ सागर विच है। जन्म मरण सुख दुख उत्पत्ति परल सब परमात्मा दे विच हो रही है, सब ईश्वर दे विच हो रही है। ईश्वर नू खोजना नहीं है, खोजना उसनू पैंदा है जो गुम हो गया है। ईश्वर दे कोल जाना भी नहीं है, जाना उस दे कोल पैंदा जिहड़ा अपने तो दूर हो गया। ना उस दे कोल जाना है, ना उसनू लभना है, सिर्फ जागना है, सुचेत होना है, सावधान होना है। परमात्मा ते जाहर जहूर है, ते हाजिर हजूर है। रविदास कहिंदे ने ए हथ भी जितना तन तो दूर जा सकदा है वो ते इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोए। जप जप के सिर्फ इतना ही पता चलता है कि वो मेरे कोल से, कि मैं उसकी तलाश करता रहा, खोज करता रहा। दरअसल खोज करना की है, अपने आप नु जगाना। धन सोती फिर सद जागनता। मनुख की जीवन चेतना सुती हुई है, पूर्ण तौर पर जागी हुई नहीं है। इंज कहिंदे ने असीं अधे जागे हुए हां, पूर्ण जागे हुए नहीं। संसार दिखाई देंदा है, निरंकार नहीं। भोजन का रस आउंदा है, भजन का नहीं। वाहिगुरू वाहिगुरू करदे हां किस नूं रस आउंदा नहीं, पर भोजन की बुरकी पाई है तो रस आउंदा है। रसना अधी जागी हुई है, अधी सुती हुई। अखां अधियां जागियां ने, अधियां सुतियां हुई ने। संसार नूं वेख रहियां ने, निरंकार नूं नहीं। कन अधे जागे ने, अधे सुते ने। ये जगत नूं सुन रहे ने, गुरु नूं नहीं सुनदे, ना परमात्मा नूं सुनदे। शरीर संसार नू स्पर्श कर रहा है, निरंकार नू नहीं। जब कोई पूर्ण तौर पर जाग जाता है, सुचेत हो जाता है, तो रसना नू भजन का भी रस आन लग पैंदा। रसना गीदी बोलत राम, वो जैसे राम कहिंदा है, वो जैसे वाहिगुरु कहिंदा है, रस नाल भर जाता है। उन्हों जो कुछ दिखाई देंदा है, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। जप करके तप करके अपने आप नू जगाना है। कीर्तन सुनया होया, कीर्तन कीता होया, उसे दा ही सफल जिन्हें जपना आरंभ कर दिता। लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, उस एक दा नाम रसना नाल जिसने जपना आरंभ कर दिता, और उतने चिर तक आरंभ जारी है जितने चिर तक ते जागया नहीं। जब जाग जांदा है, रसना खामोश हो जाती है, शब्द प्राणा विच बस जांदा है। तो मैं इस तरह जद भी किसी महापुरुष नूं आत्म ज्ञान होया, वो इस गल ते हैरान होया, प्राप्त कुछ भी नहीं होया, जिहड़ा प्राप्त सी उसका पता चल गया, लभिया कुछ भी नहीं, मिलिया कुछ भी नहीं, जो मिलिया ही होया सी उसका पता चल गया। बस आम जगत नूं पता नहीं होंदा जो मिलिया होया है, जिसनों असी भगत संत कह देने आ, उन्हों पता है कि उसे हाथ तो भी नेड़े है, उसे हाजिर नाजर है। जब कभी इस तरह की उपलब्धि किसी नूं होंदी है, उसनों हैरानगी भी आती है कि मैं जगत नूं दसां। हकीकत ए है, असलियत ए है। और कभी कर्म कांड तो उच्चे उठने की कोशिश करो। और कबीर एक मायूसी जाहिर करते ने, राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखो नहीं गाहक नहीं मोल। कबीर कहते हैं कि राम नाम का हीरा लभे है, अजीबो गरीब अवस्था की प्राप्ति हो गई है। ये हीरा हुण मैं देना चाहना, वेचना चाहना। कहते संसार का जब धन किसी नूं प्राप्त होवे, छुपाने की कोशिश करता है, पर जब कभी रब्बी दौलत मिलती है उसनों, तो उस दे अंदर एक दसण दी भुख पैदा हो जाती है कि मैं बाकियां नूं भी दसा। हर मनुख एक बहुत वड्डी खान है हीरे ते रतना दी। सारे पहाड़ां दी सोना चांदी नहीं आउंदा, ते समुंदर दी सारी थां दे उत्ते हीरे मोती नहीं आउंदे, पर हर जीवन दे अंदर प्रभु दा नाम है। नवनिध अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। कोई भी जीवन खाली नहीं कि उसके अंदर परम जीवन ना होवे, परम आनंद ना होवे। कबीर कहते हैं मैं तलाश कर रहा उस मंडी दी, उस बाजार दी, जिथे हीरे बिकते ने मैं बेचना चाहना। राम रतन धन पाए के कबीरा गांठ ना खोल, नहीं पटन। पटन कहते बाजार नो, आप कहते कोई बाजार ही नहीं है, कितने बेचा। हुण हीरा ते जौहरी बाजार विच बिकेगा ना, हीरियां दी मंडी च बिकेगा। सब्जी मंडी ते हीरे नहीं बेची दे, और सब्जी मंडी ते सब्जी खरीदण दे ग्राहक आणगे, गाजरां मूलियां लैण वाले आणगे, सब्जी लैण वाले आणगे, कोई हीरे लैण वाले थोड़ी आणगे। कबीर कहते ने हीरा कोल है, वेचना चाहना। जो अगमी दौलत मैनू मिली है मैं दसना चाहना, जो अगमी रस मैनू मिले है मैं जगत नू समझाना चाहना, हीरा मिले है बेचना चाहना। मंडी कोई नहीं, पता है मंडी की है सत्संग, हर शहर में सत्संग नहीं होगा, हर जगह सत्संग नहीं होगा, गली गली विच मंदिर है सत्संग किधरे किधरे, गली गली विच गुरुद्वारे ने सत्संग किधरे, सुनिया पईयां ने मस्जिदां खाली पे ने मंदिर, या किधरे कद पुजारी बेचारा बैठा ते घड़ियाल बजा रहे, कुछ भी नहीं, टेपां चल दियां पईयां। हुण मशीन बंद भी करे, हुण मशीन कीर्तन करे, क्योंकि मनुख दी मशीन ते कीर्तन करना नहीं चाहिए। चलो होया घर विच बैठ के सुन लिया, पर हुण सत्संग विच भी मशीनां चल दियां ने, बैराज साहब का पाठ टेप ला लो, आसा दीवार का कीर्तन टेप ला लो, सुनो। और किसी हद तक मनुख भी मशीन होता जा रहा है, सारा दिन भी टेप रिकॉर्डर के अंदर कीर्तन चलता रहे, सारी जिंदगी चलता रहे, तो टेप रिकॉर्डर में कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाना, बस मनुख भी इस तरह का ही हो गया, यह भी महसूस कर मशीन ही हो गया, मशीन की तरह की यंत्र की तरह सब कुछ हो रहा है, जागृतता नहीं है, सुचेतपना नहीं है। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, जिड़ा कम जितना कीमती होवे, अहम होवे, खास होवे, उस दिन उतनी एकाग्रता चाहिए, उतनी गहराई चाहिए, उतना ध्यान चाहिए। धर्म का तो मतलब ही है ध्यान साधना, गुरु से ध्यान नहीं है तो जे धर्म की यात्रा शुरू नहीं होगी। कबीर कहते हैं कोई पटन ही नहीं है, कोई बाजार ही नहीं है। हिंदुस्तान के दो इतिहासक शहर ने, एक आगरा एक जयपुर, इन दो शहरों में बाजार ने उन्हों का नाम है जौहरी बाजार। आगरे का जौहरी बाजार अकबर ने बनवाया से, जयपुर का जौहरी बाजार महाराजा जय सिंह ने बनवाया से। अकबर के समय, राजा जय सिंह के समय, इन दो बाजारों में हीरों की खरीदो फरोख का काम शुरू होया, बई सिर्फ हीरे, रतन, पन्ने, लाल, मूंगे, नीलम, जवाहरात, पन्ने, जौहरी बाजार। आगरे के जौहरी बाजार देखते अजकल चमड़ा ही बिकता या मोटा मांस बिकता है, जौहरियां दी दुकानां कोल। जयपुर का जिहड़ा जौहरी बाजार है उत्थे हीरियां दी खरीद फरोख्त होंदी, उत्थे सिलसिला है। पर इतना वड्डा यह देश है, हीरियां दी मंडी, हीरियां दा बाजार किधरे किधरे, हर थां ते नहीं, हर जगह नहीं है। हर शहर की सब्जी मंडी जरूर है, कपड़ा मार्केट है, लोहा मंडी है, लकड़ मंडी है, हर शहर विच हीरियां की मंडी नहीं है, जौहरी बाजार नहीं है। कबीर कहते हैं जिहड़ा हीरा कोल है वेचना चाहना पर पटन नहीं है, बाजार नहीं है, जिथे गाजरां मूलियां पईयां बिकदियां मैं उत्थे हीरा लैके बैठ जावा बेचण, इत मूर्खता होगी, इत मूर्खता होगी। हर जगह जिते सच की गल नहीं की जा सकती, परमात्मा की गल नहीं की जा सकती, इतने कोई स्रोता ही नहीं, कोई चाहत ही नहीं, कोई तड़प ही नहीं, उत्थे की बयान करना। तो कबीर कहते ने कोई मंडी ही नहीं है, नहीं पटन। आप कहते ने भ्रमण करद्या करद्या कदी कदाएं मंडी मिल जाती है, पटन लग जाता है, बाजार लग जाता है। दुनिया का भ्रमण करते करते किसी शहर के सत्संग लग पैंदा, तो कबीर कहते खुशी हो जाती है, मैं मंडी लग पई। पर आप कहते ने मेरी खुशी एकदम मायूसी दे बदल जाती है, क्यों? नहीं पटन, नहीं पार खो, पटन ते लभ पे है, बाजार ते लभ पे है, पर उत्थे जिहड़े आउंदे ने पार खो नहीं ने हीरियां दे, समझ कुछ भी नहीं। आ रहे ने मंदरां विच भगवान दी कोई समझ नहीं, आ रहे ने गुरुद्वारिया विच गुरु का कोई बोध नहीं, पढ़ रहे ने नमाज मस्जिदा विच खुदा की कोई समझ नहीं, खुदा का कोई ज्ञान नहीं। कहते पारखू ही कोई नहीं, जब पारखू कोई नहीं तो हीरा मिट्टी और की है, जब पारखू ही नहीं है तो हीरा कच्छ है और की है। जयपुर के जौहरी बाजार में एक सिंह की भी दुकान है, वो हीरे मोतियां का काम करता। किधरे एक दिन मैं जयपुर राजा पार्क के गुरुद्वारे 14 रत्ना की कथा की थी, मैनू कह लगा गया नहीं जी ये रतन तुसी वेखे ने, नहीं विशेष रूप विच ये नौ आंदे ने, नौ रतन, हीरा है, लाल है, पन्ना है, मूंगा है, नीलम है, जवाहर है, मोती, इस तरह की गिनती नौ बनती। मैनू कह लगे ये तुसी देखे ने, मैं कह नहीं सारे नहीं देखे। कहने लगे अज वक्त कढ़ो मैं थानू दुकान पर लै जाना अपने सारे दिखा देना, मेरे को सारे ही नहीं, असी यही काम करते हैं, साडा यही धंधा है। उसकी दुकान पर पुखराज नहीं सी, उन्हें पड़ोस की दुकान तो मंगा के मैनू दिखाया, बाकी सारे रतन दिखाए, एक एक की जो कीमत दसदा गया मैं हैरान होंदा गया। पूरा बाजार जौहरी बाजार है। कबीर कहते ने हीरा लेके मैं बैठ गया, कोई पारखू ही नहीं है, किसी को समझ ही नहीं, नहीं पटन नहीं पारखू। मैं दोहरा दिया, आ रहे ने लोकी मस्जिद खुदा की कोई समझ नहीं है, आ रहे ने लोकी गुरुद्वारे गुरु का कोई बोध नहीं है, बड़ी भीड़ जा रही है मंदिरों में भगवान का कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी समझ नहीं, नहीं पटन नहीं पारखू। आप कहते ने कदी कदाई भरमन करदिया करदिया किसी बाजार में पारखू भी मिल जाते, समझ पता है सत्य की है, संतोख की है, दया की है, प्रेम की है, निर्वैर जज्बे की है, समदृष्टि की है, चर्चा ही हो रही है सत्य दी, संतोख दी, समदृष्टि दी, दया दी, निर्वैरता दी, निर्भयता दी, पर दैवी गुण है न की समझ कुछ भी नहीं। सूरज अपना चानना वंडदा है किरणा दे राही, परमात्मा का प्रकाश मनुख के हिरदे विच फैलदा है गुणा दे राही, और जैसे जैसे मनुख के अंदर गुण वधदे ने वैसे वैसे रब्बी चानना वधदा है। धार्मिक मनुख की पहचान गुणा करके, ये कितनी दया है, ये कितना प्रेम है, ये दृष्टि विच कितनी समानता है, ये कितना निर्वैर है, कितना निर्भय है, इन्हां दैवी गुणा के पैमाने नाल ही नापना पैंदा है ये मनुख कितना धार्मिक है, और किस तरह नापोगे। चानना सारे दा सारा सूरज दा है, गुण सारे दे सारे परमात्मा दे ने, सब गुण तेरे मैं नाही को, गुण ते सारे उस दे ने, रोशनी इत्थे गुरुद्वारा हाल दे छो रही है, पर रोशनी ते सारी सूरज दी है, गुण सारे ही परमात्मा दे ने। कबीर कहने भरमन करदिया करदिया खुशी हो गई एक दिन कि बाजार भी लब पिया ते पारखू भी लब पिया, उन्हें समझ आया समदृष्टि किसनु कहते, दया की है, ज्ञान की है, विज्ञान की है, निर्वैरता की है, निर्भयता की है, शील की है, संयम की है। ग्राहक सिर्फ है, आया ही नहीं बाजार विच, उन्हें परख भी है, समझ है। तो कबीर कहने मन खुश हो जाता है, चलो पारखू मिल गए। कहने ने संगीत कोई गा रहा हो, कोई आलाप कर रहा है, ਪਰ ਜਦ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਰਾਗ ਹੈ ਕਿ। ਕੁਛ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ ਸਾਰਾ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਖ ਵੀ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ, ਕਿਉਂ? ਪਾਰਖੂ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਟਣ ਨਹੀਂ ਪਾਰਖੂ ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਖੂ ਤੇ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਗੱਲ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਾਹਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੜਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਪਰ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ 'ਤੇ ਲੱਭਿਆ ਪਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦਾ। ਹਰ ਚੇ ਜ਼ੂਦ ਬਰਾਇਦ ਦੇਰ ਨਾ ਪਾਇਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੀਟੀਆਂ ਪੱਥਰੋਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੀਰੇ 'ਤੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੰਖ ਅਤੇ ਸਿੱਪੀਆਂ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਚ ਲੱਭ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਤੀ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਖੂ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਵੀ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਮੋਲ, ਇੱਥੇ ਕਬੀਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਏ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮਨ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਆਪਣੀ ਚਿਤਵਨੀ, ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਇਹ ਭੇਟ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਦਇਆ ਹੈ, ਸੀਲ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਹੈ, ਇਹ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਵਸਤੂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਤ ਭੇਟ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਜਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਘਿਰਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸਮਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨੇ। ਇਹ ਮਤ ਭੇਟ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲੈ ਲੈ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੌਡੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੰਦੀ ਮਤ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਉਜਵਲ ਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦਕਿ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੈ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ, ਪ੍ਰੀਖਸ਼ਰ ਤੇ ਤਿਆਗੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤੜੀ, विसारे दूजा भाव दियो, धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन बंदे नू अपना मन अर्पण करने की इजाजत मिले। पहले पहले बच्चा पूर्णिया ते लिखता है, पूर्णे पाने पैंदे, ये सब पूर्णे पाने ने, धन अर्पण करना, फुल अर्पण करने, वस्त्र अर्पण करने, अन्न अर्पण करना, ताकि एक दिन बंदे नू अपना मन अर्पण करने की इजाजत आ जाए। और जैसे मन अर्पण किया परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। रोज सत्संग विच आना, कथा कीर्तन सुनना, ये सिर्फ अपने आप नू तैयार करना है कि एक दिन असी अपनी मत भेट कर देंगे, अपना मन भेट कर देंगे। कि जिस दिन अपना मन देन नू जी करे, मत भेट करन नू जी करे, समझ लो सत्संग दा फल मिल गया, सत्संग दी सफलता प्राप्त हो गई, चौली विच पै गई। ये फल है, क्योंकि अपना मन जैसे भेट करता है मनुख, ते गुरु दी मत प्राप्त होंदी है, तो गुरु दी मत विच ही परमात्मा है, मनुख दी मत विच पदार्थ ने, मनुख दी सोचनी विच की है संसार है, पदार्थ ने, गुरु दी सोचनी विच परमात्मा है, निरंकार है। मत भेट की अपनी ले ली गुरु की मत, उस मत द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अपनी मत देते शराब पीना है, गुरु की मत दे अमृत छकना है। अपनी मत देते दोपहर न उठना है, गुरु की मत दे अमृत वेले उठना। बस जैसे गुरु की मत आई, सारे दैवी गुण जो है आ जाते हैं। गुरु की मत दे ही परमात्मा है, गुरु की मत दे सारा अनंत परिपूर्ण परमात्मा का रस है। सतगुर रहमत करन, सत्संग करद्या करद्या साडा मन तैयार होवे कि ये मन भेट कर देना है, गुरु की मत ले लेनी है, इतने शब्द प्रवान करने, सतगुर रहमत करन, बख्शिश करन, ओ महान हीरा, ओ महान रब्बी दौलत सानू भी प्राप्त होवे, जिसकी चर्चा जिसका जिक्र सतगुरु की जो है बाणी विच है। सारियां दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद, महापुरखों का भी हार्दिक तौर पर धन्यवाद। ये पावन स्थान जिथे मैं देखदा वाकई छोटे छोटे बच्चों की देख रेख भी है, और बहुत सोहनी लंगर की मर्यादा भी है, संगत ते पंगत का सिलसिला है। पातशाह रहमत करन, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, बख्शिशा करन, संगत चलती रहे, पंगत चलती रहे, ताकि दुनिया दियां शरीरक लोड़ां ते अध्यात्मक लोड़ां दी पूर्ति होंदी रहे। सारिआं दा हार्दिक तौर पर धन्यवाद। बोल टुक दी शवा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: रेडियो स्टेशन 1550 AM गुरबाणी सैगमेंट तुहाडे तक। स्वर्गवासी सरदार अजीत सिंह जी बाद स्वर्गवासी माता सुरिंदर कौर बाद दी याद दे विच 1550 AM तो गुरबाणी प्रचार कीता जांदा है। 1550 रेडियो दे उत्ते गुरबाणी दे किसे भी प्रोग्राम नूं स्पॉन्सर करन वास्ते 604-961-7790 604-961-7790 1550 AM। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
3: सुन दियो जी।
4: हां जी
3: दसो जी, की पकाइए?
4: अपने गवांड वाले छुट्टी के न जाइए।

0: इस तेजे सबसे पहले खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: पंजाब फॉरेक्स गगन सिंह, पंजाब दे विच जे रुपये पहुंचदे करने ने, जे रुपये बाफर हो गए ता डॉलर इत्थे पहुंचने करने ता गगन सिंह 604-349-1313 24 घंटे दे विच पंजाब रुपये पहुंचणगे ते 24 घंटियां दे विच डॉलर इत्थे लै लियो 6043491313 यूनिट 103-8840-120 स्ट्रीट सरी 6043491313 604-349-1313 गगन सिंह पंजाब फॉरेक्स दावा ते वादा पक्का।

0: तेजी सब्जी भले खाना है, फ्रूटी कहना जाना, जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: फैमिली केयर फार्मेसी
2: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
1: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
2: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
1: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
2: फ्री ब्लिस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
3: थ्री लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाई।

0: सब्जी फल खाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना जाना है, फ्रूटी कहना ही जाना।
1: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदो मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नू है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा। टैक्स पेपर फिल करने होन, बुककीपिंग होवे या किसी भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नू। कॉल 604-325-8370 604-325-8370
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether you're thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.